मैं कहया सब हुक्मा हो जियो, हर भगत खजाना बख्शिया, गुर नानक किया पसाहो जियो। ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी।

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती।

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुक है गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी

अंदर शोभाए मान कोई बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडपागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइय, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे ने। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब ए शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उचारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणे, बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया है, शराब का पेश किया है। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कह लगे एक वारी पी लिए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं। इन्नी टेक के समाधि लाई दी कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कहन लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छत पाए ने, अमोवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चों गिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाई है ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट कीता होर भांडा फिट कीता ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी दा पोचा फेरिया ते थल्लों अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। इक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वाल। बाबा जी कहन लगे शराब दा नशा नहीं, ओ रस की होए जेड़ा शाम नू पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नू पी चुका हां ते एहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओदा नशा ओदा सरूर ओदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पूछा ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियों गुड़ कर ज्ञान, परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नूं गुड़ बनाया, ध्यान कर पावै ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना, मैं इनू अमवे दे फुल बनाया, कर करनी कस पाइया, ते उच्चे आचरण नूं किक्कर दे सक बना दिता है, पाठी भवन
आ शरीर नूं भट्ठी बना दिता है इस मोह दी, मोह नूं मैं साड़न तुरिया वा। भाठी भवन तुसी मिट्टी दा पोचा देंदे हो, प्रेम का पोचा, ते इहदे विचों शराब नहीं एक रस अमिओ चवल गया है, इहदे विचों अमृत दीआं बूंदां डिगदीआं, एक रस अमिओ चवाई है। कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो, मन मस्त हो गया, नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा, एमस बनी प्रेम निव लागी, शब्द अनाहत गया, एमस दा अर्थ हुंदा दिन ते रात, एवो जिहा सुरूर ओह विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओह शब्द सुनाई दे रहे। ओह शब्द आप जी ने सरवण किया, ते जे आपां कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी, ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो, बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नूं नहीं, हर प्राणी मातर नूं कहा, जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है, इस नशे ने ना लोक सवार नहीं, ना परलोक सवार नहीं। ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने। हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने, कहिंदे ने मानस भरिया आणिआ, मानस भरिया आए, जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमो धक्के खाए, जिदे पीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं, उहो जिहा बंदे नूं तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा, नादर जना मेरी जात बख्यात चमारन, उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नूं मन्निआ हिंदुस्तान दे लोगों नूं, पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दीआं लहरां दे पाणी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी उहदे वल झाकदा नहीं। उहनां दा बचन सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दीआं लहरां दी शराब बना लै, सलल दा अर्थ लहर, सुरसरी सललकृत बारनी रे, पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पानंग। सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं। खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी, गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है, अगे लोकां नूं ठगदा सी, अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया। गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने। इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उहनां दी मनौत सी, एक परंपरा बनी हुंदी सी, ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी, ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया। हरिद्वार पहुंचे ने, अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है, ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने, ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिआ, तन धुपदा पिआ पर मन धामदा है, मन धुपदा नहीं, मैं बेनती कीती धामदा दर ते दौड़दा पिआ, पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी दा असर नहीं, ते कुछ कु ने पानी दियां बुक्कां भरियां ने, ते सूरज वल पानी पै सकदे ने, ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नूं, आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए। बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लहिंदे नूं पानी झटना शुरू कर दिता, पानी सिंजन लगे, ते जदों बाबा नानक जी इकले लहिंदे नूं पानी सिंजदे पए ने, हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है, ए हिंदू है, ते जे हिंदू है ते चढ़दे नूं पानी छड के लहिंदे नूं पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली वारी इत्थे आए, कहन लगे हां, फिर कहने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नूं दईदा लहिंदे नूं नहीं। सतगुरु बाबा जी कहने चढ़दे नूं क्यों,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਝੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਏ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ, ਅਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਪਾਣੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਰੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਪਾਣੀ ਅੱਪੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਣ ਆਇਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਏ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 37 ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ 13 ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਦਣ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸਲ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਦਣ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਪਾਇਆ ਉਦਣ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਏ ਜਲੂਸ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਏ ਬਕਣਾ,
आम तौर पर असी बकना अखर बकवास नू कहने हां, पर गुरु ग्रंथ साहब कहने बकना अखर भी माड़ा नहीं। कोई जन हासों देगा जोर चरण गहू, अगला अखर बको शुभ रसना। कहने मैं अपनी जुबान तो बोला की बोला, जिन्हें मेनू रब ने जोड़िया मैं ओदे चरण घुट के पकड़ा। चरण गहू बकू शुभ रसना, दीजो प्राण अकोर अकोर दर ते भेटा, मैं अपने प्राण भी ओदे चरणा विच भेट कर दे। खैर जेड़ी मैं बेनती कर रहा, भाई गुरदास कहिंदे ने जिदन जमया से उदन माया ने प्रभाव पाया, विचों गर्दा निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया। जिदन जन्म होया भलिया कोई करोड़ा विचो विरले जेदी लिव जुड़दी आ, नहीं तां लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ते भाई गुरदास जी ने बड़े कमाल दे बचन कहे, कहिंदे जिदन जमया से उदन साई विसरिया, पर जिदन व्याह होया उदन मां प्यो नू विसार दित्ती। पर सारिया ते गल नहीं टुकदी, जेड़े केवल मां बाप दी सारा जीवन तां बेइज्जती करदे रहे ते मरण तो बाद पानी लै लै के ते रोटियां लै लै भाइयां ते पंडतां दे पिछे तुरदा रहे, उन्हां नू भाई गुरदास कहिंदे पए। कहिंदे ने कामण कामणे आरिए कीतो कामण कंत प्यारे, नी तूने हारिए इस्त्रिए तू कामण ने इस्त्री ने पति ते टूणा क्यों जा कर दिता। जमे साई विचरिया, जिदन जन्म होया सी उदन रब नू भुला दिता, विवाया मां प्यो सारे जिदन शादी होई।

नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे इस विशेष गुरमत समागम दी हाजरी भर रहे गुरु सवारियो, आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन गुरु प्यार वालियां पासों सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा दा सदका हजूर दे अमृत बचना दी विचार आपां कर सकीए। खास करके अज सवेरे अमृत वेले जिथे हरिमंदर साहिब विचों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रब्बी फरमान नू अकाली हुक्म नू आप जी ने सरवण कीता, उथे अज कत्तक दा महीना प्रारंभ होया है। सारे महीने विच

कभी फरीद की मां ने दिता। कह लगी पुत्र खुदा की भगती करिए ते रब खान वास्ते मिठा देंदा है। इतिहास गवाह है मिठे की पोटली नू लेके चलिया एक दिन मां दे सामने खलो कहिंदा मां मेरिए केड़े मिठे की गल करनी है रब वर्गा मिठा किते भी नहीं बच्चा ही सी ना मिठे लई तुरिया एक राज लई तुरिया ते उन्हां बाणी विच कह दिता शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यों माझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद एक बच्चे सी गुरमुखो ओ भी बच्चा सी जिहड़ा दिल्ली दी धरती ते खलोता वंगार के कहिंदा सी मेरी मां झूठ बोलदी है मैं सिख हां मैनू कतल करके बाबा फतेह सिंह दे कोल पहुंचा दिओ। ओ भी चार साल दा बच्चा सी जिदा सीना चीर के कलेजा तड़पदा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मुंह विच तुन दिता ना बच्चे ने चीक मारी ना बापू ने खाई कीती। तुहाडा इतिहास है गुरमुखो ओ सरहद दियां नीयां ने। मैं एक बेनती तुहानू करांगा तुसी भावें तुहानू रब ने सब कुछ दिता इत्थे पैसे की कमी नहीं तुहाडे विचों करोड़ां पति होने ने। बच्चे जदों अपने ले जांदे हो ना गर्मी दे दिनां विच कल्ले हिल स्टेशन नहीं कदी गर्मी दे दिनां विच सरहद दियां नीयां कोल भी जाके खड़े करिया करो। गुरमुखो मैं कहांगा बच्चियां दे ट्रिप बनाओ रात ले जाओ ते कदी ओ समय जदों कोई भी ना होवे उस एकांत विच चौंकड़े मरवा के कहो बेटा ओ देख ठंडा बुरज पो दी रात विच दादी अपनी गोद दा निग पई देंदी है बच्चियां आ देख नीयां एदे विच बाबा फतेह सिंह बोलिया सी ते बोल के कहिंदा पिया सी सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से डरता नहीं है अकाल किसी शहन शाह की शान से उपदेश अपला सुन लो जरा दिल के कान से कह रहे हम तुमको खुदा की जुबान से। गुरमुखो ओ भी तां देखण विच बच्चे ने पर साडे बाबे ने उस तो अगे चलो बच्चियां नू जे होर प्रेरणा देनी है भावे सारियां सहूलतां ने अपने घरां विच नौकर ने चाकर ने। गुरमुखो कदी हरिमंदर साहब जरूर मैं जिथे भी जाना एक होका जरूर देना मेरी बेनती जे सिखो तीन चीजां तो कदी भटक्यो ना अमृत तो अमृत बाणी तो ते अमृत सर तो ये तुहाडे जीवन दा आधार ने। अमृत बाणी नाल जुड़ियो ते नाम अमृत दे प्याले खंडे बाटे दे अमृत ना थिड़क्यो ते गुरु रामदास दा दरबार साहिब ना कदी भुल जायो। बच्चियां नू लिजाओ तरीका जेक मैं इत्थे बेनती करा भावे बड़े सुख ने तुहाडे कोल पर उत्थे जाके कदी घंटा लंगर दे भांडे मांजो बच्चियां नू लैके तजर्बा करके देखियो। मैं कहना प्रैक्टिकल धर्म है कथा कहानियां नहीं ठीक है कथा सुनाती किसी ने चार प्रमाण वध लाते किसी ने घट लाते गल तां प्रैक्टिकल तौर ते है। उदासी महापुरश इकट्ठे हुए मैं पढ़ रहा एक बुजुर्गां दा जीवन कह लगे आओ सुखमनी साहब दे अर्थ करिए ते बिरध बाबा 85 साल दा उन्हूं भी लाया बाबा जी अज अर्थ कर लगे हैं अर्थ पहले शलोक दे ते कर ले जदों पहली तुक पढ़ी ना सिमरों सिमर सिमर सुख पावूं कल कलेश तन मैं मिटावू बाबा सोटी लैके उठ पिया। चेलिया ने कहा बाबा जी अजे तिरथ शुरू होए ने कहिंदा बस आ ही कमा लिया ते समझ लो सब कुछ कमा लिया। प्यारियो आंदा चौखे अर्थ की गुरु ने गल मुका दिती तू सुख पालना है ना सिमरो सिमर सिमर सुख पावू कल कलेश तन मैं मिटावू बस बस एनी गल ते मैं पहरा देन चलिया दूजी दे अर्थ मैं कल नू पुछांगा जे मेरे अंदर नू सुख मिलिया ते नहीं ते एदी कमावांगा जी। देखो इनू कमाओ बच्चे लैके जाओ ए उथे लंगर दे बर्तना विच खलोवो अमीरी दा करीच ना करिए मेरे घर अरबां रुपये ने नहीं चेते रखियो दे दर दे झाड़ू लाण वाले उस दे दर दे जोड़ियां दे धूड़ दे विच नवाबियां पईयां ने सरदारियां पईयां ने। बच्चियां नू लिजा के आप खलोवो पहलां पर एक तरीका है सेवा करन दा मतलब गल्लां करनियां नहीं लंगर दे बर्तना विच तजर्बा करियो जेड़ा भी शब्द बच्चे नू चेते वे उन्हूं इको गल कह पुत्र एक घंटा जे भांडे मांजने सिर्फ तू जो तेन हुंदा है बोली जाई पहला सेवा विच खलोवो परत के इशनान करके अंदर जाओ ते घंटा गुरु रामदास दे चरणा विच बिठा के लियायो। कदी दीप सिंह नू मां इस तरह ही हरिमंदर विच लैके जांदी सी क्योंकि पिंड नेड़े सी मां रोज लैके जाना जदों हरिमंदर
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਕੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨੀ, ਕੱਲਾ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਭਾਜੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਭਾਜੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾਣ ਲੋਕੀ ਐ ਪਰ ਸੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਥਾ, ਦੋ ਥਾਂ ਕਥਾ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਓ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

महान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नयन अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरराज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमें दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै।

तो मैं इस तरह मैं जिथे जिथे घूम फिर के देखा गुरुद्वारिया की मुखी की कोशिश किवें पहुंची है सताधारियों की कोठी तक किवें गुरु तक पहुंची है इस ढंग की कोशिश ना हुई की नहीं बिल्कुल नहीं की थी। लहर ठंडी पै गई तो हम गुरुद्वारे का प्रधान का ना लीए तो प्रधान ना लेंद कोई गुरसिख याद नहीं आता इन्हें याद आएगा कोई MLA होगा कोई पार्लियामेंट के बूहे खड़का वाला होगा और की है गुरुद्वारे का सिकत्तर है जी तो फौरन पता चल जाता है ठीक है कोई सताधारियों की कोठी की परिक्रमा करता होगा और की और कुछ नहीं होर की है और इस सिकत्तर कोल की है और इस प्रधान के कोल की है तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी कुछ दिस पिया कि शायद वक्ती तौर पर यह लहर ठंडी पै उन्होंने एक सवैया उच्चारण किया वो भी मैं थोड़ा सरवण करा दिया भावें समा काफी हो रहा है अंदरों भावें शरीर से गला ना भी इजाजत दे रहा है तो नाल दे सहयोगी हिमायती हमदर्द भी कहें बहुता समय ना लो पर अज दिवाली का त्यौहार है थोड़ी जी पड़ास मैं कड़ी लावे मैं खामा खा जो है मैं अंदर रख के लै जावा वो गल जो है ठीक नहीं होगी भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि मैं एक किसान वेख्या चंदन दिया लकड़ा उन्होंने कट कट के ते खेती दे आले दुआले वाड़ ला रहा चंदन बड़ी कीमती लकड़ जिहड़ा चंदन थानू आम बाजार च मिलता नकली चंदन बावन चंदन नहीं वो तो मैं देखा सैकड़े रुपए किलो के हिसाब नाल तोल के बिकता जिहड़ा आसाम विच जे मैसूर के बागान विच तो बड़ा कीमती है बहुत महंगा है बहुत महंगा है चंदन की लकड़ ये थोड़े जिहे बूटे मैं इंदौर के एक बाग च देखे सन महाराजे के महल विच दो लगे हुए सन छोटे छोटे भाई साहब कहते चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम कंचन सपट मद कांच ग्रह राखी भाई साहब कहते किसान जब मैं देखा कि चारों पासे चंदन की वाड़ ला रहा सी तो मैनू पूछना पिया अंदर तू बोया की है इन्नी कीमती लकड़ यह चंदन ये हजारा रुपए मुल बिकन वाला तू चारों पासे इसकी वाड़ पिया लाना पहले अंदर दस तू केसर बीजे की बीजे आखिर अंदर है कि आखन लगा अंदर ते किकरां दे बूटे लाए ने किकरां दे बूटियां दे आले दुआले चंदन की वाड़ चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम कंचन सपट मद कांच ग्रह राखी है भाई साहब कहते फिर मैं एक होर करा माध वे कि उस बंदे दे घर दे बक्सा सी सोने दा सोने दा सोने दी तिजोरी कौन बनांदा है सेफ ते आखिर लोहे दी बनेगी ने तिजोरी ते लोहे दी बनेगी उन्हें सोने दी बनाई बक्सा बहुत वड्डा ते भाई जी कहते मैं उस तो पूछया जे तू बक्सा सोने दा बनाया है इहदे च हीरे रखे ने पन्ने नीलम कहिंदा नहीं कच ते पत्थर रखे कंचन सपट मद कांच ग्रह राखी सोने दे बक्से दे कच ते पत्थर ते चंदन दी वाड़ किकरा दे आले दुआले ते भाई जी तो पूछी तुसी कहना की चाहते हो साधन दुराए के असाध अपराध करे उल्टई चाल कली काल ब्रह्म पाकी इस कलयुग दे जिस मौजूदा दौर दे उल्टी चाल की जिदी जिंदगी बिल्कुल किकरा दी तरह विकारी लोभी हंकारी ऐसा किड़ा ऐब है जिहड़ा अंदर ना होवे ते बार चंदन दी वाड़ धर्म दा मुखी जी धर्म दा मुखी है गुरुद्वारे दा मुखी है जी प्रधान साहब ने ते लोगों नूं भुलेखा पै जांदा जी प्रधान साहब ने ते बिल्कुल गुरु नाल जुड़े हुए होणगे क्योंकि चंदन दी वाड़ जो दिखाई देंदी प्रधानगी जो दिखाई देंदी गुरुद्वारे दी पर यह नहीं पता थोड़ा जिहा अंदर झात मार के देख बूटे किकरां दे नाल कख नहीं बड़े बड़े शराबिया दुराचारियों ठगा कौम द्रोहियों पंथ द्रोहियों मैं गुरुद्वारिया का प्रधान वेख्या गुम फिर के ये कुछ मैं वेख्या वाड़ चंदन दी ते बूटे किकरां दे जिंदगी किकरा वर्गी ते जिम्मेवारी की धर्म के मुखिया से डब्बा सोने का है

रोज अमृत सिंचन नाल भी निमदा सहज नहीं जाता, भाव सुभा नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लग्या उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदा, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहिंदे निम नूं कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नूं अमृत तां बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर। इस तरह हजूर कहिंदे ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन ऊपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहिंदे